जोजोलपा थौ नेपाल सम्बत छिन्छ सौ पी खुद दिल्लागा तृतीय थो रेडियो नेपालका अन्य दिशा जिरू विपाके नेपाल भाषा या समाचार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सुनसरी नापाया जिल्ला बोलङ्गु संवेदनशील अवस्था यातन हङ्केता मनुते गुजुधन या पूर्ण कथन सुरक्षा सामाजिक सद्भाव लिङ्का तेत सरकार मध्यक योजना चनागु दयादिगुदु सिंह दरबारे प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषदीय कार्यालय मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलीय नेता पी व मधेस अतिथि जिल्ला सम्प्रतिनिधित्व यैपी सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सांसद पी नापाम हिग खलाबला ब्याका दिसे प्रधानमन्त्री शाह राज्य संयन्त्र या फुक्क अङ्ग उच्च सतर्कता नापा परिचालित जुया चौगुली नागरिक तथा विचलित मजुई से संयमता क घाता इनाफ्या नदिगुदु सांसद पी स प्रधानमन्त्री सहाया इनाप्याता प्याछि कथं कया दिसे थपी थथे थथगु निर्वाचन लाग्या खटे जुइगु बचौ पङ्का दिगु दुसा स्थानीय स्तरीय दीर्घकालीन शान्ति ओ भातृत्व लिङ्का तेगु नीति निगु पक्ष नेतृत्व नागरिक समाज बुद्धिजीवी स्थानीय राजनीतिक दलीय प्रतिनिधि नापा अपल खलाबला ब्याकुसे थुजागु खयाता दिकेगु नीति संसद सुझाव ब्यादिगुदु नापा हथ्या जागु लागातेके धार्मिक सामाजिक सौहार्दता लिङ्का तेगु नीति मडिक प्याछियो एकबद्धता हसना लल ह्या मागु सामाजिक सञ्जाल या भ्रम अफभाष याम याता याम वर्ग याता तापा किता स्थानीय स्तर हे जनचेतना बोलङ्की मागु अभियान ह्याके मागुली सांसद बिगुख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह थगु नेतृत्व सरकार प्रदेश तेगु सशक्तिकरण व अधिकार सम्पन्नता याता आपल थ्याबिया चुनागु थ्यादिगुदु तराई मधेसे बोलङ्गु लकस याता कया प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषदीय कार्यालय सिंह दरबारे मिग गोसागुगु उच्चस्तरीय बैठके प्रधानमन्त्री शाह संविधानीय पूर्ण व प्रभावकारी कार्यान्वयन जक फुक प्रदेश कथन दया चुङ्गु लिता सेलनाके फैगु ध्यादिगुदु प्रधानमन्त्री शाह प्रदेश तेत केन्द्रसँग थगु अधिकार पुङ्केता स्थानीय तहतक अधिकार संस्था प्रत्यायोजन याना सक्षम यात आयागु सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता जना हेजना चुनागु ध्वाथुका दिल उगो बैठके तराई मधेसिया महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादव लालबाबु राउत रामकुमार शर्मा समीम मिया अन्सारी प्रभु शाह अमरेश कुमार सिंह सरस सिंह भण्डारी डाक्टर सिके राउत नापापिस बोतिकया दिगुख बैठके वैकपिस तराई मधेस लागया थिति अन्हना सङ्गो हाट्या सुरक्षा हाट्या सुशासन या प्रत्याभूति व संघीयता या त सेना के विशेष थथगु माग विश्लेषण हो सुचत निहवया दिगुख मधेस केन्द्रित राजनीति दलीय नेता तेसा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नापाया सलस प्याछी खलाबला जुगु धयादिगुदु मिग सिंह दरबारे प्रधानमन्त्री ओ मन्त्री परिषदीय कार्यालय प्रधानमन्त्री शाह नापाया सल लिपा संचारकर्मी नापा खलाबला ब्याका दिसे वेक पिस हाठ्या नङ्केको विशेष खलाबला जुगु कना दिसे लिपाङ्गु इले तराइया छु जिल्ला तेके खने दया चुङ्गु हाठ्या नङ्केको नीति थपिस सुझौ बियागु ठो हाठ्या या त कया प्रधानमन्त्री संवेदनशील जुया प्रतिबद्धता पुङ्का दिगु कना दिगु ख सुनसरिया देवानगंज तीन कप्तानगंज जुगु झाकालिपा बोलङ्गु लकस यता ध्यान तया थिति जिल्ला तेके क्रियाशील राजनीतिक दल व धार्मिक संघ संगठन तेसा सामाजिक सद्भाव राष्ट्रिय एकता लेङ्का तेता मङ्का इनाप्या गुदु पर्साया वीरगंज सामाजिक सद्भाव भाइचारा एकता लेङ्का तेता स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधि तेगु मङ्का कथा पिकाको सद्भाव र्याली पुङ्गु दुसा फुकन जा जाति भाषाभाषी समुदाय दथुया छप्पा छत्ती जुइको आज पिकाको थो र्याली स्थानीय जनप्रतिनिधि नागरिक समाज या प्रतिनिधि उद्योगी व्यवसायी अतिथि धर्म व समुदाय हेलवा ते सम्पत्ति कागु ख धनुषाया शान्ति सुरक्षा सेलनाकेता प्रतिनिधि सभाया दुजपिस धनुषाया शान्ति सुरक्षा सेलनाकेता प्रतिनिधि सभाया दुज तेगु बोटीस हिग सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक नापान चोङ्गु दुसा धनुषाया प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइटेल हेलुवाया चोङ्गु बैठके सामाजिक सद्भाव लिङ्का तेत फुक्क कथाया लपु छेलेगु विशेष सहमति नापान चुला कगुदु अध्ययन बाँकेया प्रमुख राजनीतिक दल तेसा शान्ति सद्भाव सामाजिक एकता कानुनी शासन लिङ्का तेत मङ्का कथा इनापिया गुदु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नापाया पार्टी या नेता पिसम हिग मङ्का विज्ञप्ति पिथसे छुन कथाया
मा मधुको लपु जुइके गु विशेष सुन ज्या ख मया के त पिहा वैगु ज्या मया त नापा इनापिया गुदु सामाजिक सद्भाव लेङ्का त्यता ये या माइतीघर मण्डेला मङ्का कथा विद्यार्थी संगठन तेसा रियाली पिकाको कसा सर्वपक्षीय बैठक गोसा गोया दल तेसा बाह्र जिल्ला यता धार्मिक सामाजिक व सांस्कृतिक एकता औ सहिष्णुता या दसु जिल्ला देखेको वचनापा पङ्क गुदु थी थी धार्मिक समुदाय हेलवा तेसा शान्ति सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता विधि शासन राष्ट्रिय एकता पक्ष सेनलाक दनेता सकल नेपामी मनु तेता इनाप यागुदु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामी छानियान हेलुवा मिगो सिंह दरबारे चोङ्गु सल लिपा मुस्लिम व हिन्दू समुदाय हेलुवा तेसा मङ्का इनाप पिथना देशे छुन कथया हिंसा घृणा हो कुचा थैगो गतिविधि या त अस्वीकार या त इनाफ या नदिगुदु वेकपिस सलस दनिसे सहिष्णुता औ सामाजिक सद्भावे सेङ्केता जुया चोङ्कु थिति क्रियाकलाप या त कया सचेत जुइता नापा इनाफ या नदिगुदु नेपाली कङ्ग्रेसमा सामाजिक सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता एकता नीति स्वपुदुगु तहसँग थिति दल सामाजिक संस्था सरकार व मेगु पक्ष नपा सल यागु धागुदु सुनसरिया कप्तानगञ्ज झाका व वलिपा तराया थिति जिल्ला बोलना चोङ्गु हाठ्यान जागु लोकसय विशेष कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति मिगो चोङ्गु आखा झाका बैठक पार्टी फुक्कन तहया समिति ओडा तह तक्क थोकु त यागु कोछिगु ख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सुनसरिया देवानगञ्ज गाउँपालिका कप्तानगञ्ज नापा तराई मधेसी अतिथि जिल्ला खनेदया चोङ्गु हाट्याङ्जाको लोकसय विशेष पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव उपराष्ट्रपति परमानन्द झा नापा सहल व्याका दिगुदु राष्ट्रपति भवन शीतल निवासे मिग चोङ्गु सहल दोथी वेक पिसा थो झाका याता कया दुख पोङ्का दिसे सलस दिसे दयावया चोङ्गु सामाजिक धार्मिक जातीय सद्भाव सहिष्णुता राष्ट्रिय एकता लेङ्का तेता सक्क सिन कुतया मागु बिचा पोङ्का दिगु राष्ट्रपति पौडेला प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल जानकारी बिया दिगु ख सुनसरिया देवानगञ्ज झाका लिपा बोलङ्गु हाठ्या यता बुलुहु सामान्यकरण जुया वना चोङ्गु धागुदु नेपाली सेना नपा सोङ्गु सुरक्षा निकाय समन्वय व सहकार्य सुरक्षा फौजिया बालागु छेलाबुला लिपा शान्ति सुव्यवस्था झोलिक लिहाउना चोङ्गु सुरक्षा अधिकारी तेसा धागुदु नेपाली सेना पूर्वी पीर्तनापति गौरव कुमार केसी हाठ्यान जागु लाग्या शान्ति सुरक्षा सामान्यकरण पाके ह्याना चोङ्गु सुरक्षा फौज हाई अलर्ट चना चनागु धया दिगु ख गृहमन्त्री सुदन गुरुङ झाका जुगु थासे ठेङ्का पिडी छेज नापा सहमति हो खापा जुपी नापा नाप्ला धुङ्का अवस्था सामान्य देखे त अपुगु सुरक्षा अधिकारी तेगु विश्लेषण दुसा सहमति कथ सिम सियागु सिम लल ह्यागु अन्त्येष्टि प्रक्रिया न्याज्या कगु दुसा गृहमन्त्री हो पीडित छेज दथी वङ्गु चाने हेगु धलया सम्झौता नापा जुगु ख सुनसरी जुगु झाका लिपा धनुषा बोलङ्गु व प्रदर्शन यता ध्याने तसे सर्वपक्षीय बैठक चोङ्गु ली ठाउँ जनकपुर सद्भाव र्याली पिकायागु कोछिगुदु प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद रुइटेलिया नायसुई समिग चोङ्गु बैठक सामाजिक सद्भाव शान्ति हो धार्मिक सहिष्णुता लेङ्का त्यता सकल पक्ष सक्रिय कथा भाला कुविता नापा वेक्ला इनाफिया नदिगुदु नेपाल सरकार व लघु वित्त पीडित सङ्घर्ष समिति दथी न्यागु धलसँग सहमति जुगुदु थो सहमति कथ लघु वित्त पीडित या हाठ्यान हङ्केगु नीति झिङ्ग्यानु दुने कार्यान्वयन योजना नापा या सिफारिस दुत बी मालिगु जुगुदु सहमति नापा लघु वित्त पीडित आन्दोलन व अनसन्या ज्याजो दिकगुदु नेपाल सरकार निसङ्गु लघु वित्त पीडित या हाठ्यान हङ्केगु नीति निसङ्गु वार्ता पुचया दुज व लघु वित्त व वित्तीय शोषण विरुद्ध सङ्घर्ष समिति पदाधिकारी दथिम हिग अर्थ मन्त्रालय न्यागु धलैया सम्झौता चुलाक गुख संघीय संसद सचिवालय सथिथि विशेष स्वापुदुगु गुगु विधेयक मिग दर्ता यागुदु नेपाल सरकार मन्त्री परिषद आया कोचिनाया लिधसा प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा थो विधेयक दर्ता जुगु संघीय संसद सचिवालय धागु ख ठगी अपराध विश्वासघात संगठित अपराध नापाया कसुरे संकलन जुगु ल्हा वागु दोपसा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण या तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी या त जोङ्गुदु जिल्ला अदालत यहाँसँग थो मुद्दा जोमा पुर्जी कया केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँग खटेजुगु प्रहरी पुचसँग भण्डारी या त जोङ्गु केन्द्रीय प्रहरी
समाचार कक्ष जानकारी बिगुख स्मार्ट टेलिकम या फुक्क सम्पत्ति दूर संचार पूर्वाधार संरचना दूर संचार प्रणाली दूर संचार सञ्जाल प्राधिकरण या नामे वोगुली नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कको एन्सेल आजिया आजी याटा लिमिटेड या मिले मतोसँग गैर कानुनी कथा लिलाम याका सरकार या हक हनन याना गैर कानुनी कथा लिलामी यागु तोपसँग वो या त जोङ्गु ख राष्ट्रिय सभाया मिगया बैठके सांसद त नापायासया झोले मन्त्री पोखरेल शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल ये सोनी गया सुकुम्बासी बस्तीसँग विस्थापित जुपी मचा मस्तेगु आखा भोनिगु वोङ्किएगु ज्याके छुन मो मया त सरकार प्रतिबद्ध जुयागु धयादिगुदु राष्ट्रिय सभाया मिगया बैठके सांसद तेसनगु नेसालिसया झोले मन्त्री पोखरेल विस्थापित विद्यार्थी तेकु आखा भोङ्के गुली नियमित याके त लिकया विद्यालय तेके स्थानान्तरण यानागु नापा धयादिगुदु छ मन्त्री पोखरेल बालाजु दुपी बुद्ध ज्योति बाल उद्यान आधारभूत विद्यालय सचिव झिङ्खुमा विद्यार्थी यता तरुण माध्यमिक विद्यालय व बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालय या सचिव नेपेमा विद्यार्थी तथा नेपाल युवक माध्यमिक विद्यालय पकना जोले स्थानान्तरण याकु जानकारी बियादिगु दुस अथेना किपुया राधा स्वामी सत्सङ्ग केन्द्र दुपी झिमा मचा मस्तेता प्याप्सन काठमाडौँ महानगर या ग्वालिसा आवासीय सुविधा जागु पूर्ण छात्रवृत्ति अध्ययन व्यवस्था यानागु व खरिपाटी बोडे इचुङ होल्डिङ सेन्टर दुपी ङे गुम मचा मस्तेता उमिसन ल्यगु विद्यालय भर्ना यानागु मन्त्री पोखरेल सूचना बियादिगु खसा थिथि होल्डिङ सेन्टर चना चोपी मचा मस्तेता विद्यालय वेता वनेगु नितिन सवारी सुविधा नसा झोलन टिफिन बक्स विद्यालय पोसाक झोला स्टेसनरी ल बोतल व सरसफाया झोला नापान लल हानागु मन्त्री पोखरेल जानकारी बियादिगु ख प्रतिनिधि सभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति मिग चङ्गु बैठकले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक 2081 दथी दफावार सहल जुगुदु बैठकले विधेयक या दफा 11 उपदफा 1 सँग पुनः परीक्षण या व्यवस्थापन छुन अपराध रिपोर्ट उपचित बुझे मजुसा अदालत या सिफारिस हान परीक्षण या दैगु व पुनः परीक्षण याबले व्याग्न प्रयोगशाला या प्रयोग या मालिगु प्रावधान दुथ्या के त संसदसँग संशोधन तया दिल पाकिस्तानी दुगु हलिया झिनी कगु त जागु हिमाल ब्रोड पीके चपु गुई चल वम्बले सम्पर्क मधुपे मध्य पेमा आरोही या सीमा लुई कगु दु धासा लोकङभामा नेपाली आरोही निर्मल पूर्जा नापा खुमा आरोही तनासङ्गुदु अल्पलाइन क्लब अफ पाकिस्तान एसिपी या कथा झिमा आरोही पुचया आरोहण या झोले हिम पैरोखे लागु ख तनाचोपी आरोही खुमा मध्य क्षमा नेपाली दु खराब मौसम या दथी उत्तर पुचस लुइकेता पेङ्गु सीमा खराब मौसम या दथी उद्धार यागु झोले पेमा सीमा मुङ्कगु मुङ्केगु कुत यागु दुसा गिलगत बाल्टिस्तान लागे पर्यटन विभाग उपनिर्देशक साजिद हुसेन या त नेथना दिसे अल जजिरा चोगु बुख कथन य दुपी खुमा तना चोपी आरोही या त मालेगु निते यको थाकुया चोङ्गु लागाना यको हाठ्यान जागु धयादिगु दु हलिया छियादो मिटर सिबे त जागु झिम्पेगु हिमाल फुकन सिबे मो इले आरोहण याना कीर्तिमान कायम याना दिमा पी सोद दुमा पूर्जा पुच नापा हिमचल लिपा स्वापु त्वा धगु ख उदार या नेते हेलिकप्टर नापा फुक हल जोल छेला तगु दु पाकिस्तान या डन अनलाइन या कथ सिपीले ओमानी नधिरा अहमद अब्दुल्लाह अल हार्थी व नेपाया पुर बहादुर गुरुङपी

बस पोलिया भी उसाया ता आयु कामना देशास एम बिचु महासंघ पखे छवा निंक अभिधर्म पाठ ओ धर्म देशना नापा महायानी लामा गुरु पी ओ बज्रयान गुरु नापा जाना आयु आरोग्य कामना देशा गुग धमावती गुरुमा धर्म कीर्ति विहार या संस्थापक नेपाले नारी जागरण या निहलुवा त्रियान बुद्ध शिक्षा प्रचारक व विक्रम सम्बत 2022 साले धर्म कीर्ति विहार या पलिस्ता याना दिगु ख वेक्ल नेपाल भारतीय बुद्ध शिक्षा विशेष योगदान देशना दिगु दुसा अथियाना वेक्लन 2029 साल निशे धर्म कीर्ति पत्रिका प्रकाशन नापाङको खुसी निरिसिने प्रब्रज्या या उलेजा नापा याना दिगु ख आदेशा पुण्य भुख मिग छनु हे अथिहे खुइ दुवापरवासी पिँ जल व स्थल मार्ग जोसे मोरोकोसँग उत्तर अफ्रिका दुग स्पेन लागा स्युटा दुहाङ्गु दु स्युटा प्रवेश यागु झोले छु दिन थुके मोतिन सुई पेमा मनुष्य धुङ्कगु अनय अधिकारी तेसा धागु दुसा स्पेनमा सर्वोच्च अदालत थोल्या स्युटा व मेगु स्पेन लागा मेली थेनिगु कुत कथा समुद्र टिका तहको आप्रवासी त्यता थथे मोरोको लित छुए त मिले मजुइगु फैसला नापानियङ्कगु दु चे सोदो मनुतेगु ब्याचना चोङगु स्युटा खुइदु आप्रवासी वङ्गुली राष्ट्रिय मानवीय संकट अवस्था बोलने फैगु सिउटा प्रशासन धागुदु आम समय जानकारी थेय हिमाली लगाया छुन थासे पहाडी लगाए यको थासे मध्यटक या वा वैगो चपुकुहा वैगो सम्भावना कुबिगु दुसा तराई लगाया छुन थासे मलनापा लाप्सा तय भतिचा तस्कौ वा वैगो सम्भावना कुबिगु दु बागमती गण्डकी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश पहाडी लगाया छगुनीको थासे आफ्ना वा वैगो सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या तापुदु वङ्गु निपे घौस सोनिगा क्वाज निच्यागु डिग्री सेल्सियस तति लुगु खस थाउन हिने ये सोनिगा क्वाज निन हेगु निसे निगुगु डिग्री सेल्सियस तति चोनिगु दुखुमा दु रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा समाचार निनादिस शुभ

सु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिर रिरहङ्ने दा ढेनमुला गा इन्दिरा थिङ सिराहाला गोल बजारजी गोल इटासी शिवा गणेश यादव ला दिम थेमे थेन ब्रे बुदे सहमति ताबामुला लहाण्डी जोङ सुरक्षा समिति ला चिसाङ लिछा तिलमा मुना दिम ब्लोन गुरुङ यादव ला दिम सिराहाला औरही गाउँपालिका ला तुलसी यारी दोस्युमा शिवा यादव ला आपा आमा ङेङ्गोर थेन काठुई ताबा लिछा ब्रे बुदे सहमति ताबा हिन्ला शिवाला दिम थेमेसे थान्बा तामकादे रि डिक्पा लिचा सहमति ताबा हिन्ला बिसी दिम्ब्लोन गुरुङसे सुङबा मुला गोल बजार घटना च्याबा साइबा लासी दोषीदा कोङबा कारबाही लाबा बिसी ब्लोन गुरुङसे सुङबा मुला सुनसरीला देवान गन्जरी ताबा घटनाला विरोधरी गोल बजार रि प्रदर्शन लाबा धुरी ओने गोली टासी गणेश यादव शिवा हिन्ला शिवा यादव ला दिम थेमेदा लाख चुई टाङ्गा राहत पिनबा थिएन सहित घोषणा लाबा गे योनान तिवारी स्थानीय सरकारदा पाङबा मुला सुनसरी जोङ प्रशासन गेजाङसे जोङला लोलो लोलो थुम्री लाबन खाबा कर्फ्यू हटाई दिबान निषेधा आज्ञा लाबा मुला जोङला सिडिओ इन्द्र देव प्रसाद अरियालसे तेस्युबा कागिर अनुसार तिनी स्योला ब्रे ह्याँसी सोमचुई मिनेट हेन्से तिलाई दुई गाछा धोना कर्फ्यू हटाई दिबा हिन्ला कर्फ्यू हटाई दिसाइनोन स्थानीय प्रशासन एन 2028 अनुसार तोक लाबा थुम्री मेन्दो गाबीमा लाना मिनी ग्लागिग्री चिबारी याङबा वाल चिसाङ धर्ना राङबा गे कादे लाबारी आपिनबा ताबा मुला चुराङलासिन जोङ प्रशासन गेजाङ धनु सासेनोन जारी लाबा कर्फ्यू आदेश हटाई दिबान निषेधाज्ञा लाबा मुला जोङला सिडिओ प्रेम प्रसाद लुइटेलसे छिपाका गिर्दी तिनी स्योला चुई यामा हेन्से दोषी अर्को आदेश आतादे धोनादा निषेधाज्ञा लागू लाबा हिला पाकिस्तानला ब्रोड पिकरी ग्लिङ ढुइसे नाङसी माबा मेन्दो चुई लान सिबा लुइरो स्याप्पा मुलाबिसी ज्योमो गाङक्रेबा निर्मल पूर्जा गोबाङरी मेन्दो चुई मिनिकादे पाकिस्तानला ब्रोड पिक क्रेबा टोलीरी नेपालला किली पेम्बा शेर्पा पुर बहादुर गुरुङ निमा शेर्पा ङवाङ थिन्दु शेर्पा थिएन गेलु शेर्पा निभा मुभा इलाइट एक्सप्रेस से प्रेस कागिर गिक छिसी मेन्दो चुई नोन शिवा कादेला लुइरो स्याप्पा मुला बिसी पाङबा हिन्ला नुवाकोट थुम नम्बर गिक ग्याम प्रतिनिधि सभा सदस्य रि ढासुबा सदस्य थिएन सूचना थिएन सञ्चार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल सिनासे जोङला लिखु गाउँपालिकाला विकास निर्माण थिएन मिनिसे खारङबा तामकादे माइबा मुला विवाह गोसुबा मुला सञ्चार ब्लोन खाङरी लिखु गाउँपालिकाला मिनिकादे थिएन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा नुवाकोट जोङला चोहो रामेश्वर गजुरेल पार्टीला लोलो लोलो ओडा चोहो थिएन धानपोका देथेन काठुई लासी स्थानीय तहरी मराङबा समस्या थिएन विकासला ताम्री लिङ्मो लासिउबा मुबा काठुरी सञ्चार ब्लोन डाक्टर तिमिल सिनासे स्थानीय तहरी मराङबा समस्या थुम्ना लाबारी दोक्से गाछा ओजाक लाला मुल्मी कादे लान बङ तादोला बिसी सुङबा मुबा सानम रिथेन पर्यावरण ब्लोन गीता चौधरी से चिया थेन कफी थुम्ला सुधार लाबारी गेदल सोबा निर्णय लासिबा मुला युलबाङ चिया थेन कफी विकास बोर्डला चोहो नोन मुबा ब्लोन चौधरी से तिलमा किर्तिपुर रि मुबा चिया थेन कफी विकास बोर्डला मियो घेजाङरी बोर्डला धानपोका देथेन नेपाली रे चिया थेन काफी थुम्दा लेना लाबारी तोबा ठिम सुधारला ताम्री काठुई ताबा मुबा ब्लोन चौधरी से चिया थेन काफी थुम्दा ज्याबा सोबारी बोर्ड से बङ लातोला बिसी सुङबा मुला म्यागदिला अन्नपूर्ण गाउँपालिका निस स्थान ला फेकन्डो ब्रा फ्रेसी ग्रेन ढुइला जोखिम ताबा लिछा दोसल्ले नाम्साला भिर खाल्डा बस्ती ग्रेन जोखिम रि मराङबा मुला ढुइसे नाम्सान जोखिम ताबा लिछा सुरक्षित ग्लारी लेबा मुला नोबा ब्रा फ्रेसी ताइबारी तिबा लिछा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाला चोहो भरत कुमार पुन जोङला सिडिओ रविन्द्र आचार्य पालिकाला ग्रेन प्रशासकीय अधिकृत कपिल पाण्डे ओडाला चोहो प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी उद्धार कर्मी छ्याम नाम्साला मिनिसे ढुई निबारी खाम्बाग्ला च्याबमुबा
सा व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला थिएन सामान्य प्रशासन ब्लोन खाङसे सहकारी ठगिला मुद्दा योना बिमा योना थुम्ना लाबारी सहकारी कसुर च्याबा इजला सोबारी बिसी ग्रेन ठिमखाङला ग्रेन ठिम्पोन छेनपोदा प्रतिवेदन पिनबा मुला सहकारी ठगिला मुद्दा तेबासे चु लेबाचे चु मुद्दा योनान फर्च्योट लाबा इजला सोबारी पाङबा खिनला युलबारी ब्रेलबा नोङना लाबा विमान पर्सा ग्याम मेन्दोब्ली मिनिदा चुङबा मुला जोङ प्रहरी गेजाङला डिएसपी राजु कार्कीसे सुङबा अनुसार थेनी कादेदा बिरगन्ज महानगरपालिका चुइगिक रानी घाट ग्याम चुङबा हिला प्रहरीसे युलबारी ब्रेलबा नोङबारी खाम्बा गे आलाबारी मोइजेन लाबान चुराङबा लासाम कोङबा कारबाही लाबा बिसी पाङबा मुला लाना नाम ताइबासे ढुई थेन भालसे लामा युल्ला लोलो लोलो जोङला ग्रेन सडक घ्यालम कादेरी मोटर खाबा निबारी प्रभावित ताबा मुला नेपाल प्रहरीसे पाङबा अनुसार तिलाई सडक घ्यालम भन्दन ताबा मुला बिसाम तिलाई घ्यालम्री मुन्डी मोटर सेङबारी आपिनबा ताबा मुला काभ्रे फलाञ्चोक थेन सिन्धुली थुइबा बिपी राजमार्गला खुरकोट नेपाल थोक कटुन्जे बेसी सडक खण्डारी ताबारी खाम्बा जोखिमदा गोसी ला डुङ्यामा हिन्से सियोला ब्रेङ्यामा धोना मोटर कादे सेङबारी आपिनबा ताबा मुला चुराङलासिन कान्ति लोकपत्रिन न्यासेला घाङ्यामा हिन्से सियोला डुङ्यामा धोना मोकोन मोटर कादे सेङबारी भन्दन लाबा मुला दोलखाला लामो साङ्गु रामेछाप सडक ग्यालम रसुवाला पासाङ लामो सडक ग्यालम तामा कोशी स्योङसे ग्यालम थाबा लिचा होजा सडक ग्यालम नोन भन्द लाबा मुला मिनिला लेबा माग्दा गोसी राहदानी विभागसे नि सिफ्टला छ्याम बिदाला कुनुनोन सेवा सेङबा मुला विभागरी ओने हेन्से नि सिफ्टरी सेवा पिनबान राहदाङसे तोङगिक ग्यार्जाङा आवेदन फारम ठ्वाङबा मुला कोरियाला रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएसला लागि आवेदन पिनबा नेपाली कादे दा सहजता तगाई बिसी विभागसे विद्युतीय पासपोर्ट सम्बन्धी सेवा ओने हेन्से चु निचुई निला कुनु धोना दा नि सिफ्टरी सेङबान मुला बिसी विभागसे पाङबा मुला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसे भूमि प्रशासन गेजाङ लगन खेलजी गे लबा कर्मचारी थेन लेखा पढी छोङबोन कादे से लाख सोम घुस रिबा बिबान मेन्दो गाँदा तिलमा चुङबा मुला होजा गेजाङला नायब सुब्बा उत्तम कुँवर विशाल सुन्दास राजकुमार मगरथेन लेखा पढी व्यवसायी शैलेन्द्र राणा मगरथेन समीर कटुवाल ला डिक्सी साला बकस पत्र लाबा धुरी मिनी थेन घुस रिबा बिबान सूचना खाबा लिछा उजुरीला आधारी थेनी कादेदा चुङबा हिन्ला बिसी आयोग से पाङबा मुला नेपाल आयल निगमसे टेकुला गेजाङ ग्याम कान सोबा एलपी ग्यास चुङबा दा व्यवस्थित सोबारी लोलो लोलो गाँ कम्पनी ला ग्यास सिलिन्डर चुङबारी ढिक्ना लाबा मुला निगमसे तिनी हेन्से याम्बु उपत्यकारी चुङबा नेपाल एचपी एभरेस्ट सुगम थेन श्रीराम ग्यासला सिलिन्डर सम्बन्धित उद्योग ग्याम चुङबा व्यवस्था ढिक्ना लाबा हिला मिनिकादे ग्याम ग्यास आयाङबा विभाग गुनासो खाबा लिछा छोङबोन कादेला ध्यान छेङना लाबान निगमसे ग्यासला आपूर्ति ढिक्ना लाबारी छोङबोन कादेदा पाङबा मुला रोङसा ब्लोनखाङसे कुबेत्री ताबा आक्रमणी शिवा नेपालीला लुई रो नेपाल भवारी माइबन मुला बिसी पाङबा मुला कुबेत्री ओने ताबा आक्रमणी शिवा तेह्र थुम्ला सोम कुमार तामाङला शिवा लुइरो तिनी कुबेत एरोज ग्याम नेपाल भवन मुला चु दुङ्गाला घटनारी नेपालसे डोङबाला भ्ला साङ्गे हुल्डी दोगाई विमान दिम थेमेरी दुङ्युर प्रसालबा मुला स्यान्सिबान मोबा सानग्युर जिन्जी फुल्ला

ई रेडियो नेपाल ठिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। आइ भिनसर जनकपुर धाममे शान्ति रैली निकालल गेल विरुद्धमे हिन्दू सम्राट सेना विभिन्न मांग सहित आन्दोलनमे उतरलाक बाद गृहमंत्री सुदन गुरुङ हिन्दू सम्राट सेनाक प्रतिनिधि संग जिला प्रशासन कार्यालय परिसरमे रहल अधिकृत संगम सभा कक्षमे वार्ता कऽ रहल छथि। वार्तामे हिन्दू सम्राट सेना द्वारा राखल गेल 12 बुदाक मांगमे दुनू पक्षक बीचमे छलफल भऽ रहल अछि। वार्तामे धनसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभाक सदस्य मनीष झा, धनसा प्रमुख जिलाधिकारी प्रेम प्रसाद लुटेल, सहायक प्रमुख जिलाधिकारी बहुदेव झा, जनकपुरधाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह तथा हिंदू सम्राट सेना पदाधिकारी सब सहभागी रहल छथि। आई भिनसर हिंदू सम्राट सेना प्रतिनिधि सभा के सदस्य एवं राजसपा के नेता मनीष झा के 12 बुधाक मांग सहित ज्ञापन पत्र बुझौने छल। जिला प्रशासन कार्यालय धनसा जनकपुरधाम उप महानगर पालिका के 4 किला क्षेत्र में एहिसे पहिने लगबैत आयल आई से कर्फ्यू आदेश में परिवर्तन कलक है। धनसा प्रमुख जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुटेल आई जारी कैल निषेधाज्ञा आदेश में भिनसर 10 बजे से निषेधित क्षेत्र में 5 गोटे से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होबा सन जनकपुरधामक 4 किला भीतर निषेधाज्ञा आदेश जारी कयलनि अछि। निषेधाज्ञा आदेश जारी भेल क्षेत्र में जनकपुर धामक उत्तर में लक्ष्मीनिया हाट बाजार चौक होइत पश्चिम सुनरजोड़ा चौक धरि, पूर्व में लक्ष्मीपुर धरि, पूर्व में बेलौनी रोड MQ स्टील से 500 मीटर पूर्व पेट्रोल पंप हुलाकी सड़क से राष्ट्र प्राथमिक विद्यालय धरि, दक्षिण में नगरायन नगर पालिका से नगरायन चौक धरि आ पश्चिम में सुनरजोड़ा सोहनी मणिमंडप नेपाल नर्सरी स्कोन जनकपुर दुधमती पुल बेला कादमी मस्जिद धरि तोकल गेल अछि। सप्तरी सदर मुकाम राजविराज आ बोदे बरसाइन में लगाओल गेल अनिश्चितकालीन कर्फ्यू किछु घंटा कम कयल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी द्वारा आई एक सूचना जारी करैत भिनसर 7 बजे से 9 बजे धरि कर्फ्यू 2 घंटा कम कयल गेल अछि। सर्वसाधारण के दैनिक में पड़ल असुविधा के मद्देनजर करैत आई से 2 घंटा के लेल कर्फ्यू हटाओल गेल। प्रमुख जिला अधिकारी श्याम कृष्ण थापा द्वारा जारी सूचना में उल्लेख अछि निषेधाज्ञा के समय में 5 गोटे से अधिक जमा नहीं भऽ पेबाक, कोनो उच्छृंखल गतिविधि नहीं कऽ पेबाक उल्लेख कयल गेल। सूचना में जारी आदेशक अवज्ञा वा उल्लंघन कयल पाओल गेला पर प्रचलित कानून अनुसार कड़ा कार्यवाही होबाक चेतावनी सेहो देल गेल अछि। भिनसर 9 बजे से पूर्व निर्धारित स्थान आ तोकल गेल सीमा में जारी कर्फ्यू आदेश कायम राखल गेल सूचना में उल्लेख अछि। सुनसरी आ सिरहा गोलीकांड पश्चात सप्तरी में सेहो आंदोलन उग्र बनलाक बाद शुक्र दिन भिनसर 8 बजे से लागू होबा सन एहि स्थान में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी कयल गेल छल। प्रजिया थापा द्वारा जारी सूचना में राजविराज भीतर के पूर्व खारोखोला पश्चिमी हुलाकी राजमार्ग के जमुनी थलही उत्तर रूपनी रोडक बसबिट्टी चौक आ दक्षिण कोसी पश्चिम मूल नहर विष्णुपुर गांव पालिका धरि तथा बोदे बरसाई नगर पालिकाक चौहद्दी भीतर दोसर सूचना जारी नहीं होबा धरि कर्फ्यू आदेश कयल गेल अछि। प्रचलित कानून अनुसार कार्यवाही करबाक प्रज्ञा थापा द्वारा जारी सूचना में चेतावनी सेहो देल गेल अछि। सुनसरी कप्तानगंज में हिंदू आ मुस्लिम समुदाय बीच भेल दंगा नियंत्रण के क्रम में देवानगंजक 24 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता, जय प्रकाश मेहता आ ओही घटनाक विरुद्ध प्रदर्शन के क्रम में बल प्रयोग भेला पर सिराहाक गोल बाजार में बृहस्पति दिन 15 वर्षीय गणेश यादव के मृत्यु भेलाक बाद थप सुरक्षा संवेदनशीलता बढ़ल अछि। घटना में निधन भेल सबके संख्या 3 पहुँचल अछि। एना 1 दर्जन से प्रदर्शनकारी गोली लागिक घायल भेल अछि। संगे प्रदर्शनकारी के क्रम में विभिन्न निजी घर तथा व्यावसायिक महल सब में आगजनी भेला पर अरबों टकाक संपत्ति क्षति भेल अछि। प्रदर्शन के क्रम में झड़प भेला से किछु प्रहरी सेहो घायल भेल, प्रहरी जनौलक अछि। आंदोलन के कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 दिन से ठप बनल अछि। एहि बीच जिला प्रशासन कार्यालय सिरहा लहान नगरपालिका में जारी कयल गेल कर्फ्यू आदेश हटौलक अछि। प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौड़ेल आई सूचना जारी कऽ जिलाक पिछला सुरक्षा अवस्था के विश्लेषण के आधार पर स्थानीय प्रशासन आई 2028 के दफा 6
के अनुसार लगाओल गेल कर्फ्यू आदेश हटाओल गेल जानकारी देलन अछि। प्रशासन सुरक्षा निकाय संघक समन्वय तथा स्थानीय अवस्थाक मूल्यांकन पश्चात कर्फ्यू हटेबाक निर्णय कयल। सूचना में उल्लेख अछि कर्फ्यू हटौलाक बाद लहान क्षेत्र में जनजीवन क्रमशः सामान्य बनैत गेल अपेक्षा कयल गेल अछि। सिरहाक गोल बाजार में बीतल बृहस्पति दिन भेल घटना में जान गुमनिहार गणेश यादव के परिवार के 10,00,000 टका राहत उपलब्ध कराओल जायवला अछि। गृह मंत्रालय के अनुसार यादव के शहीद घोषणा करबाक प्रक्रिया तत्काल आगू बढ़ाओल जायत। हुनकर स्मरण में स्थानीय सरकार संघक समन्वय में गांव पालिकाक उपयुक्त स्थान में स्मृति उद्यान निर्माण का ओहिठाम सालिक सेहो स्थापना कयल जयबाक बताओल गेल अछि। परराष्ट्र मंत्रालय कुवैत में भेल आक्रमण में पर निधन भेल नेपाली नागरिकक पार्थिव शरीर स्वदेश आन लागल जनौलक अछि। उत्तरी कुवैत में बृहस्पति दिन भेल आक्रमण में पर निधन भेल तेराथुम निवासी नेपाली नागरिक सोम कुमार तामांग के पार्थिव शरीर आई कुवैत एयरवेज मार्फत नेपाल आब लागल अछि। एहि दुखद घटना प्रति मंत्रालय दुख व्यक्त करैत शोक संतप्त परिवार जन प्रति संवेदना प्रकट कयलक अछि। कुवैत स्थित नेपाली राजदूतावास स्थानीय निकाय तथा संबंधित कंपनी सँ आवश्यक समन्वय कऽ पार्थिव शरीर स्वदेश पठेबाक प्रक्रिया सम्पन्न कयल जनौलक अछि। लुम्बिनी प्रदेशक मुख्यमंत्री चेत नारायण याचार्य सामाजिक सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता आपसी एकता कायम रखैत सुरक्षा निकाय के उच्च संवेदनशीलताक संग जिम्मेवारी निर्वाह करबाक लेल निर्देशन देलन अछि। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय में आई बैसल लुम्बिनी प्रदेश सुरक्षा समिति के वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री आचार्य पछिला समय तराई मधेशक किछु जिला में घटल घटना नहि दोहरा देबाक लेल आ शांति सुरक्षा कायम रखबाक लेल आपसी सहकार आ समन्वय में जोर देल जेबाक बात सुरक्षा निकाय तथा संवेदनशील थप हेबाक आवश्यकता उल्लेख कयलनि। ओ सामाजिक संजाल मार्फत होबला दुष्प्रचार अफवाह आ उत्तेजनात्मक गतिविधि पर प्रभावकारी निगरानी बढ़ेबाक लेल निर्देशन देलनि। मुख्यमंत्री आचार्य सब सुरक्षा निकाय के प्रतिनिधि उच्च मनोबल के संग परिचालित भ रहल उल्लेख करैत आवश्यक समन्वय सही सूचनाक आदान प्रदान के आओर प्रभावकारी बनेबाक लेल आग्रह कयलनि। वीरगंज में दू गोटे युवा बीच भेल व्यक्तिगत मारपीट घटना के सामाजिक संजाल आ किछु संचार माध्यम धार्मिक तथा सांप्रदायिक रूप द प्रचार कयल कहैत जिला प्रहरी कार्यालय परसा गंभीर ध्यानाकर्षण भेल जनौलक अछि। प्रहरी के अनुसार शुक्र दिन साँझ वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 2 स्थित ईदगाह चौक में पुरान व्यक्ति विवादक कारण और व्यक्तिगत विवाद सँ 18 वर्षीय समीर अंसारी आ 18 वर्षीय युवा रंजीत यादव ऊपर हाथपात केने छल। कूटपीट सँ ओहिठाम मारपीट के कारणे ओकर ठोर आ नाक में चोट लागल। यादव के स्थानीय प्रभु अस्पताल में उपचार भ रहल अछि। एना घटना में संलग्न अंसारी के प्रहरी नियंत्रण में लऽ चुकल अछि। एहि बीच परसा प्रहरी के प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपेक्षक चक्र बहादुर मल विज्ञप्ति जारी करैत सामान्य व्यक्तिगत विवाद के सांप्रदायिक रूप द कऽ सामाजिक सद्भाव भरबाक प्रयास नहि करबाक लेल सबसँ आग्रह कयलनि अछि। प्रहरी घटनाक निष्पक्ष अनुसंधान कऽ दोषी ऊपर कड़ा कार्यवाही कयल जयबाक स्पष्ट करैत भ्रामक अतिरंजित समाचार के पाछू नहि लेबाक लेल तथा तत्पर आधारित भऽ कऽ धार्मिक सद्भाव कायम रखबाक लेल संचारकर्मी सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता सर्वसाधारणसँ अपील कयलक अछि। सेवाग्राही के बढ़त गेल चाप के व्यवस्थापन करबाक लेल राहदानी विभाग 2 शिफ्ट के संगे छुट्टी के दिन सेहो सेवा संचालन कयलक अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित विभाग में आई सेहो सेवा प्रवाह भेल जनौलक अछि। विभाग में एहि साउन 14 गते सँ 2 शिफ्ट में सेवा दैत आयल दैनिक 1,500 आवेदन फार्म खुलाओल गेल अछि। कुड़िया के रोजगार अनुमति प्रणाली EPS के लेल आवेदन देनिहार नेपाली सेवाग्राही के सहायता प्रदान करबाक लेल विभाग विद्युतीय राहदानी संबंधी सेवा साउन 14 गते 22 गते धरि 2 शिफ्ट में संचालन कयल विभाग जनौलक अछि। एहि अवधि में पहिल शिफ्ट भिनसर 7 बजे सँ दिन के 2 बजे धरि आ दोसर शिफ्ट दिनक 2 बजे सँ साँझ 9 बजे धरि संचालन होयत। सार्वजनिक छुट्टी के दिन शनि दिन आ रवि दिन सेहो भिनसर 10 बजे सँ साँझ 4 बजे धरि विभाग सँ सेवा प्रवाह हेबाक जनाओल गेल अछि। उद्योग विभाग स्थिर पूंजी 25 करोड़ टका से कम पूंजी भेल उद्योग के विभिन्न सिफारिश के काम प्रदेश सरकार आ ओहि मथत के निकाय से हेबाक स्पष्ट कयलक अछि।
उद्योग विभाग सार्वजनिक सूचना जारी कर प्रदेश सरकारक कार्य क्षेत्र भीतर पड़े वाला स्थिर पूंजी 25 करोड़ टका से कम पूंजी भेल उद्योग के हक में उद्योगक लेल आवश्यक पड़े वाला मशीनरी औजार कच्चा पदार्थ संबंधी कार्य प्रदेश सरकार आ ओई मथत के निकाय से हेबाक उद्योग विभाग जनौलक अछि। एहिना रसायन आयात तथा वनडेड वेयरहाउस एवं कच्चा पदार्थ खपत के नॉर्म्स निर्धारण के सहितक अन्य छूट सुविधा सहूलियत के सिफारिश सब संबंधित प्रदेश सरकार आ वही अंतर्गत के निकाय सब हेबाक स्पष्ट कलक अछि। विभाग उद्योगधर्ता आ वही से संबंधित अन्य थप 7 तरहक सेवा सेहो ऑनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह करयवला भेल अछि। विभाग सार्वजनिक सूचना जारी कऽ एहि सन 18 गते सँ औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सँ थप 7 तरहक सेवा सेहो ऑनलाइन सँ सम्पादन हेबाक जनाओल गेल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषामे समाचार समाप्त भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर्वत पर हिमस्खलन में प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पूर्जा सहित 6 नेपाली पर्वतारोहियों की मौत। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने पर्वतारोहियों के प्रति व्यक्त की श्रद्धांजलि। सुनसरी सहित तराई मधेश के जिलों में जनजीवन होने लगा सामान्य। सुनसरी, सिरहा, धनुषा और परसा में हटाया गया कर्फ्यू। और मध्य पूर्व में युद्ध समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का आह्वान। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के काराकोरम क्षेत्र स्थित ब्रॉड पीक

0: पर्वत पर गुरुवार को हुए हिमस्खलन में फंसे प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पूर्जा सहित सभी 10 पर्वतारोहियों की मौत की पुष्टि हुई है। हिमस्खलन के बाद लापता हुए पर्वतारोहियों में 4 के शव शुक्रवार को बरामद किए गए थे, जबकि शेष 6 लापता थे। आज नीम्सदाई फाउंडेशन और एलिट एक्सपेडिशन ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी पर्वतारोहियों के निधन की पुष्टि की। इस दुर्घटना में म्यांगदी के दाना में जन्मे पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक और प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पूर्जा नीम्सदाई सहित कुल 6 नेपाली पर्वतारोहियों की जान गई है। मृतक नेपाली पर्वतारोहियों में गोरखा के पूर्व बहादुर गुरुंग, दुलखा के कीली पेम्बा शेरपा, ओखलडुंगा के ग्यालू शेरपा तथा संखुआ सभा के नवांग थिंडू शेरपा और नीमा शेरपा शामिल है। वहीं विदेशी पर्वतारोहियों में पाकिस्तान के सोहेल शाखी, चीन के वांग झोंग, ओमान की नादिरा अहमद और अमेरिका की मैलोरी गीस शामिल है। वर्ष 2019 में निर्मल पूर्जा ने दुनिया के 8000 मीटर से ऊंचे सभी 14 पर्वतों पर मात्र 6 महीने और 6 दिन में चढ़ाई पूरी कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। हिमस्खलन के कारण सभी पर्वतारोहियों को 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई से लगभग 800 मीटर नीचे तक बहा दिया गया था। खराब मौसम के कारण दुर्घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य चलाने में कठिनाइयां हो रही है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने ब्रॉड पीक दुर्घटना में जान गंवाने वाले पर्वतारोहियों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की है। प्रधानमंत्री शाह ने आज सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की 12वीं सबसे ऊंची 8051 मीटर ऊंची ब्रॉड पीक चोटी के आरोहण के दौरान विश्व कीर्तिमानधारी नेपाली पर्वतारोही निर्मल पूर्जा नीम्सदाई सहित 6 नेपाली पर्वतारोहियों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सुनसरी सहित तराई मधेश के जिलों में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। जिला प्रशासन ने सुनसरी, सिरहा, धनुषा और परसा में कर्फ्यू हटा दिया है। गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने बताया कि सिरहा के गोल बाजार में गोली लगने से मृत गणेश यादव के परिवार के साथ 8 सूत्रीय समझौता हुआ है। लहान में जिला सुरक्षा समिति की बैठक के बाद बीती रात सिरहा के और ही गांवपालिका के तुलसियाही स्थित यादव के घर पर उनके माता पिता और परिजनों के साथ हुई वार्ता में ये सहमति बनी। समझौते के अनुसार गणेश यादव के परिवार को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी, उन्हें शहीद घोषित करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी तथा उनकी स्मृति में स्थानीय सरकार के समन्वय से उपयुक्त स्थान पर एक स्मृति उत्थान और प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके अलावा घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, उचित क्षतिपूर्ति और मृतक के परिवार के सदस्यों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने सहित परिवार की अन्य मांगों पर भी सहमति बनी है। गणेश यादव की श्रावण 14 को सुनसरी के दीवानगंज की घटना के विरोध में गोल बाजार में हो रहे प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से मौत हुई थी। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आपदा के समय केवल भावनाओं के बजाय कौशल और क्षमता विकसित कर प्रभावी सहयोग करने का आह्वान किया है। आपदा प्रबंधन संबंधी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण करुणा है। सुर्खेत डाक निर्देशनालय ने आज से नागरिकों के घर तक ड्राइविंग लाइसेंस पहुंचाने की सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत सुर्खेत, रुकुम पश्चिम और जुमला के परिवहन कार्यालयों द्वारा जारी लाइसेंस डाक के माध्यम से सीधे घर पहुंचाए जाएंगे। इससे करनाली प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को लाइसेंस लेने के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। डाक विभाग पहले से ही पासपोर्ट, सिम कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों की घर घर डिलीवरी की सेवा भी प्रदान कर रहा है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G

0: जी। नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। बढ़ती सेवाग्राही संख्या को देखते हुए त्रिपुरेश्वर स्थित पासपोर्ट विभाग ने दो शिफ्टों के साथ सार्वजनिक छुट्टी के दिनों में भी सेवा जारी रखी है। विभाग ने बताया कि 14 से 22 श्रावण तक कोरिया की रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस के आवेदकों की सुविधा के लिए प्रतिदिन 1500 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इस अवधि में सेवा सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक दो शिफ्टों में संचालित होगी, जबकि शनिवार और रविवार को भी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सेवा उपलब्ध रहेगी। जीवन की बेहतर शुरुआत के लिए स्तनपान प्रभावी अभ्यासों को और सशक्त बनाए के नारे के साथ आज से विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों और नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से युद्ध विराम लागू करने, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि लगातार जारी हिंसा के कारण मानवीय संकट और गंभीर होता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं तथा भोजन, पानी और चिकित्सा सेवाओं की भारी कमी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्र ने संबंधित देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संवाद और कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने का आग्रह करते हुए कहा कि स्थायी शांति का रास्ता केवल बातचीत और राजनीतिक समाधान से ही संभव है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर्वत पर हिमस्खलन में प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पूर्जा सहित 6 नेपाली पर्वतारोहियों की मौत। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने पर्वतारोहियों के प्रति व्यक्त की श्रद्धांजलि। सुनसरी सहित तराई मधेश के जिलों में जनजीवन होने लगा सामान्य। सुनसरी, सिरहा, धनुषा और परसा में हटाया गया कर्फ्यू और मध्य पूर्व में युद्ध समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का आह्वान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
2: फोर्जी LTE मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
3: अनन्त सम्भावनाको पुञ्ज, गतिशील मानव जीवन, कर्मशील सारा संसारका नेपाल र नेपाली मन,
4: दूर सुदूर क्षितिजका नेपाली अनुभव शब्द चित्रमा कोर्दै स्वदेशको सम्झना र परदेशको अनुभव सुन्ने सुनाउने एउटा चौतारी कार्यक्रम घर देश परदेश। कार्यक्रम घर देश परदेशमा स्वागत छ। म प्रस्तुता हेमन्त उप्रेती। विश्वव्यापीकरणसँगै यातायात र सूचना प्रविधिको विकासले अझ साँगुरो हुँदै गरेको आजको संसारमा रोजगार, स्वरोजगार, वृत्ति विकास, शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयन, तिनको प्रयोग, उपयोग र सुविधामय जीवनको आकांक्षामा मानिस संसारभर फैलिँदो छ। नेपालीहरू मात्र यसमा अपवाद छैनन्। कर्मक्षेत्रमा जहाँ जहाँ रहे पनि स्वदेश र जन्मभूमिप्रति सदा कृतज्ञ रहने नेपाली मनहरूका स्वदेश विदेशका जीवन अनुभवहरू खोतल्ने एउटा प्रयास हो कार्यक्रम घर देश परदेश। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट हरेक शनिबार राति 10 बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम प्रसारित हुन्छ। साथै रेडियो नेपाल online.com र रेडियो नेपाल मोबाइल एपमा पनि यो कार्यक्रम संसारभर सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ डाक्टर बद्री केसी। काठमाडौँ फर्पिङको सोखेलमा जन्मी हुर्की आइएससी पढाइपछि सन् 1990 36 वर्ष अघि उच्च अध्ययनका लागि तत्कालीन सोभियत संघ रुस पुग्नुभएका केसी गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको संस्थापनाको बेलादेखि नै अभियन्ता, समाजसेवी र व्यावसायिक व्यक्तित्वका रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ। सन् 2001 बायोटेक्नोलोजीमा विद्यावारिधि गर्नुभएका केसी आफ्नो प्राज्ञिक विषयभन्दा पनि व्यावसायिकतातिर र समाजसेवी संस्थाहरूतिर सक्रिय हुनुहुन्छ। पढाइमा पनि सानैदेखि अब्बल रहँदै शैक्षिक यात्रा अघि बढाउँदै आफ्नो व्यावसायिकता अनुकूल विषयमा फेरि MBA गर्नुहुने केसी परदेशीका नेपालीहरूले आर्जन गरेको शिक्षा, ज्ञान, सिप र पुँजी स्वदेश भित्र्याउनुपर्छ भन्ने भावनाले काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ। केसी, जीवनको सफलता समाजप्रतिको सहयोगमा आफ्नो भूमिका, आरोग्यता, आफ्नै मेहनत प्रतिको सन्तुष्टिमा रहने धारणा राख्नुहुन्छ। स्थापना कालदेखि नै एनआरएनएको साधारण सदस्यदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्य, महासचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष रहिसक्नुभएका केसी चिया निर्यातको प्रसङ्गमा नेपाली ब्रान्डमा मेड इन नेपाल भनेर सामान निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। त आदरणीय श्रोता, आज प्रस्तुत गर्छौँ फर्पिङ काठमाडौँमा जन्मी हुर्की 36 वर्ष अघि विद्यार्थीका रूपमा रसिया पुग्नुभई त्यो बेला सोभियत संघ विघटनको संक्रमणकालको साक्षी समेत हुनुभएका एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष, समाजसेवी, व्यावसायिक व्यक्तित्व डाक्टर बद्री केसीसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी। सुरुमा एकैछिन यो गीत मिसाउँदैछौँ, त्यसबीच कुराकानी जोड्छौँ।

0: अलिसा, तिमीलाई थाहा छ नि है म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर।
1: यो कुरा चाहिँ गोप्य राख है।

0: क्या सोच रही हो? हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना दिल।